वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्तजना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है संत मीराबाई की, आइए समूह स्वर में सुनते हैं।

अभी आपने संत मीरा बाई की भक्ति रचना समूह स्वर में सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं वसंत खरे के स्वर में संत कामपात्रा की ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: நீஹத நீஷாச்சர
1: தக்கிட்ட தக்கிட்ட நீஹத்த நீஷாச்சர

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग अहिर भैरव में ख्याल गायन. आज एक कलाकार हैं पंडित तुषार दत्तो. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी. तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित तुषार दत्तो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग अहिर भैरव by our artist Pandit Tushar Datta. He is accompanied on the tabla by Sumanta Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal rendition in Raag Ahir Bhairab by our artist Pandit Tushar Datta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तुषार दत्तो। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर राग अहीर भैरव, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल रेंडिशन इन राग अहीर भैरव by our artist Pandit Tushar Datta. He was accompanied on the tabla by Sumant Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a sitar recital of Rag Ahir Bhairab by our next artist Anjan Saha. The accompanying artist is Tarun Roy on the tabla. Now, listen to a sitar recital of Rag Ahir Bhairab by our artist Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय।
1: ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
2: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल ऑफ राग आहिर भैरव by our artist Anjan Saha. Accompanying artist was Tarun Roy on the tabla. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है रुचिरा केदार। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग यमन सुनते हैं। विलंबित छपताल मणिबद्ध रचना के बोल है नाद ब्रह्म गुण सागर, और द्रुत तीन ताल मणिबद्ध रचना के बोल है ननदी के वचन वा सहन जाए। साथ संगत तबला सचिन राजोप थे और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग यमन, कलाकार रुचिरा केदार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रुचिरा केदार द्वारा प्रस्तुत राग यमन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं रुचिरा केदार द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है आज राधे तोरे, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है हूं तो बार बार। तो आइए सुनते हैं राग रामकली, कलाकार रुचिरा केदार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राग रामकली, प्रस्तुत किया था रुचिरा केदार ने। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ek Tal, and this will be followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पूरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान प्रेजेंटिंग राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल, फॉलोड बाय अ तराना सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Sagama ba da ni da ba ma

Ragamabadani da bama gama ni bama

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, यह है रागम 24/7 DTH चैनल पर हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शहनाई वादन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मधुकर गोलवलकर के तार शहनाई वादन से। आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं माणिकराव पोपटकर। सुनते हैं मधुकर गोलवलकर का तार शहनाई वादन, राग भटियार।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मधुकर गुड़वलकर का तार शहनाई पर बजाया हुआ राग भटियार। आपके साथ तबले पर थे माणिक राव पोपटकर। आइए अब सुनते हैं मधुकर गुड़वलकर का तार शहनाई पर बजाया हुआ राग नट भैरव। ताल एक ताल। आपके साथ तबले पर है चंद्रकांत कामत। सुनते हैं तार शहनाई पर राग नट भैरव, कलाकार मधुकर गुड़वलकर।

श्रोताओं, तार शहनाई पर हम सुन रहे थे राग नट भैरव। कलाकार थे मधुकर गोलवलकर। आपके साथ तबले पर थे चंद्रकांत कामत। श्रोताओं, शहनाई वादन के इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मधुकर गोलवलकर की तार शहनाई पर बजाई हुई धुन। तबले पर है चंद्रकांत कामत।

श्रोताओं, शहनाई वादन के कार्यक्रम में हम सुन रहे थे मधुकर गोलवलकर की तार शहनाई पर बजाई हुई धुन। तबले पर थे चंद्रकांत कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 2400 घंटे डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauroshankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauroshankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauroshankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauroshankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauroshankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: Pandit Hauroshankar Bhattacharya sitar vadan ki is prastuti ka aarambh raag darbari ke saath karenge. Yeh bandish aalap aur jod ke saath shuru hogi, jo gat mein vilambit teen taal tatpashchat madhya lay teen taal mein aabaddh hai.
1: Pandit Hauroshankar Bhattacharya starts his sitar recital with raag darbari. Beginning with Alap and Jor, the composition of the rag is set to Gat in Vilambit Teen Tal, followed by Madhyalaya Teen Tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग नटभैरव. विलंबित एवं द्रुत दोनों बंदिशें तीन ताल में निबद्ध

आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सरोद रिसाइटल बाय अभिजीत राय चौधरी। ही इज प्रेजेंटिंग राग नट भैरव। बोथ द विलंबित एंड द्रुत बंदिश आर बेस्ड ऑन तीन ताल। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

ये है रागम 24 घंटे साधीन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरुद पर राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं उन्हीं का बजाया सरुद पर राग चारुकेशी। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग चारुकेशी। वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सरोद। ही वॉज प्लेइंग राग चारुकेशी। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग मिश्र भैरवी, अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला अरुण कुमार भट्ट।

ये है रागम 24 घंटे सातो दिन डीटीएच अनिरुद्ध भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाई अभिजीत राय चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी. विलंबित गत छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्णा. द विलंबित गत इज सेट टू झप ताल एंड ध्रुत गत इज सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला.

Thank you.

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्ण। वी नाउ प्रेजेंट राग श्याम कल्याण। द विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला।

0: का विचित्र वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग श्याम कल्याण बाय पंडित गोपाल कृष्णा। ही इज अकॉम्पनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।

दी आ कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावडीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।